सुधीर फड़के ने गाई और संगीतबद्ध की ब्रह्मानंद महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुकाराम की, जिसे गाया है विदुषी ज्योत्सना भोले ने।

विदुषी ज्योत्सना भोले ने गाई संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं सरोज गोखले और सहकारियों के स्वर में संत नामदेव की ये भक्ति रचना।

अभी आपने संत नामदेव की ये भक्ति रचना सुनी सरोज गोखले और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत नामदेव की भक्ति रचना।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बैरागी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं कल्याण मजुमदार. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रीतो दास.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. Listen first to a sitar recital in the rag Bairagi Todi. Our artist is Kollan Mojumdar. Accompanying him on the tabla is Preeto Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कल्याण मजुमदार, आपके साथ तबले पर थे प्रीतो दास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिर भैरव पर वायलिन वादन। कलाकार हैं अर्पण बासु, आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय।
1: लिसन टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग अहिर भैरव।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिर भैरव पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अर्पण बासु, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a violin recital in the rag Ahir Bhairab. Our artist was Orpon Basu. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है मिश्रवाद्य संगीत। मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं वायलिन वादन से। कलाकार है उस्ताद फैयाज हुसैन। आपने अपने कार्यक्रम का आरंभ किया है राग अभोगी से।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन, राग था अभोगी। आइए अब सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन की वायलिन पर बजाई हुई पिलो धुन।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे उस्ताद फैयाज हुसैन के वायलिन पर बजाई हुई पिलो धुन। श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं जलतरंग वादन। कलाकार है मिलिंद तुरानकर। आपने प्रस्तुत किया है राग मालका।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे जल तरंग वादन। राग था मालकंस और कलाकार थे मिलिंद तोरणकर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: जाना वो।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है राकेश प्रसन्ना का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग, विलंबित गत मत्त ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है केदारनाथ ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। We now present a sarod recital by Rakesh Prasanna. He begins by playing rag Shuddh Sarang. The Vilambit Gat is set to Matt Tal and the Drut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied on the tabla by Kedar Nath.

0: अभी आप राकेश प्रसन्ना का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी केदारनाथ ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिस्निंग टू राग शुद्ध सारंग ऑन द सरोद परफॉर्म बाय राकेश प्रसन्ना। द अकंपनीमेंट ऑन तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय केदारनाथ। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Pamaga, Garisavina, Haka.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन, ताल एक ताल, साथ संगत है सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी श्यामण्णा। आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन।

अभी आपने उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन सुना, आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन ताल रूपक। साथ संगत है सारंगी पर मधुकर खडिलकर, वॉयलिन पर पी शामन्ना। आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबले पर बजाया ताल रूपक।

अभी आपने उस्ताद आमिर हुसैन खां का तबला वादन सुना। सात संगत थी सारंगी पर मधुकर खाड़ीलकर, वॉयलिन पर पी श्यामण्णा। कार्यक्रम को जारी

अभी आपने अनुराधा पॉल का तबला वादन सुना, साथ संगति हारमोनियम पर अप्पा जळगावकर। आइए सुनते हैं विनायक फटक का तबला वादन, ताल रूपक, साथ संगत है वायलिन पर रत्नाकर गोखले।

अभी आपने विनायक फाटक का तबला वादन सुना, साथ संगत थी वॉयलिन पर रत्नाकर गोखले। रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रागम 24/7 चैनल पर ये आकाशवाणी पुणे की निर्मित थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनुरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चितरंजन दोलोई. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट.

0: अभी आप राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे सुनील चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्तरंजन दोलोई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार।
1: You were listening to a khayal in the rag Gorakh Kalyan. Our artist was Sunil Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla was Aniruddha Mukhopadhyay and on the harmonium was Chittaranjan Dolui. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist is Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhuri. Listen now to the sitar in the rag Rageshri. Our artist Shubhajit Mojumdar.

0: अभी आप राग रागेश्री पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर राय चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist was Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन। कलाकार हैं सरदार खां, राग है जौनपुरी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। संगत कलाकार हैं तबले पर राम स्वरूप रतौनिया। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सारंगी रेसाइटल बाय सरदार खां। द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी। द एकॉम्पैनिमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम स्वरूप रतौनिया ऑन द तबला।

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला अकॉम्पैनिमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन, कलाकार थे सरदार खां, संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

गणपति एक दंत लंबोदर कर शोलत्र पुण्र भाल लोचन विशाल धृत रुचिर माल वारे सुर पूजित कीरति अखंड तट दीन कृतज्ञ मुदित मन पद रजधा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्र

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीश त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणि धर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्रगण हर विरंच सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धारिंदा धारिंदा धारिंदा धक जय जय मन मधारि धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपा धर चरण शरण नित ध्यावत गौर वर्ण भुज केन्द्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नमः नमः जय जय हर हर हर हर नित नित नमः नमः जय जय हर हर हर।

यज्ञ ध्वंस करि करत विपुल हुंकार उठत बारिद प्रलयंकर दामिनी दमकत कड़कड़ार वज्रक्रांत धा कत्ते।

अंग अंग लपटावत शंख लोहित लोचन नाचत तांडव धाकिटक धुमकिटक तक्रां तक्रां धाकिटक धुमकिटक तक्रां तक धाकिटक धुमकिटक तक्रां तक्रां धान धिकिट धातिकिटक धा

0: ये है रागम 24 घंटे सातो दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन त्रिकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृ मूर्ति गजाननम त्रिकृत धैत गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जग मग धधक धक धक धधक धक धक जेति जय शंकर सुमन एक दंत मूस वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धाकृत।

काल राज पुनर धग धग ज्योत जग मग धक धक धक धक धक जय जय शंकर सुमन एक दंत मूसक बाणम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धाग धग धुम धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग धग

बम बम शिव शिव अगड़ बम डिम डम डम डिम डिम डिम बाजत डिम डिम डिम डिम डिगे डिम डिम डम कृत डम कृत डम कृत कृत गा डम कृत करी बम बम उपकार करत फणि धर भुजंग सिर धरति धर दि धर धर धर धर धवल धार गंगा छब चारति धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ धिगड़ जटा घटा महचंद्र छटा गृंग धकट धा धग त्रिपुंड राजे मुंड मा वक्षस्थल साजे कर्तृशूल चम चम चम चमकत भरत सबार मार मद मर शांत स्वरूप अनूप सकल सुरभूप मुकुटमणि।

धान धरत कल्याण कर उतरत मुनगन नित धा धा दिन ता धा धान धगत टकर धगत धगत धान धान धगत टकर धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान धान धगत टकर धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान धान धगत टकर धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला।

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

आदर बदल निदिग दिग कर कुठार काटत कुटिल त्रिकृत दाधा दा गणपति भग प्रथम पूज्य जग भाल लाल शुभ सुंद माल गले मुंड बीरा धागृत धुम कृतक धा दिन दिन चतुरा नन चित धारे दीनन की दीनता निवारे धा दाता प्राता शंख चक्र कर गदा पदुम धारे विष्णु विपत्ति विनाशन तिधरे धुमकृत धुमकृत दा टकिट धिकिट दा बम बम शिव शिव अगड़ बम डिम डम रु डम डिम डिम डिम तक तक तक दा दा डिम डिम तक तक तक दा डिम डिम तक तक तक दा डम रु डिम डिम डिम तक तक तक दा दा डिम डिम तक तक तक दा डिम डिम तक तक तक दा डम रु डिम डिम डिम तक तक तक दा दा डिम डिम तक तक तक दा डिम डिम तक तक दूर का

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DGH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: अभी आप फैयाज वसीफुद्दीन डागर का गाया राग भटियार सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय फैयाज वसीफुद्दीन डागर। नाउ यू शिल हियर अ सितार रिसाइटल बाय विदुषी शर्मिष्ठा सेन। शी प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल।

0: अभी आप विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल सुन रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग अलैया बिलावल प्रेजेंटेड ऑन द सितार बाय विदुषी शर्मिष्ठा सेन। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.